0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, अ स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साडी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लियर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साडी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, किस्सा कहानी कुछ भी बताना हो, @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली हिट मी अप। गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेज को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट RJ कनेका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय।
1: Number 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 6 6 6

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खान रावटोर का म्यूजिक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Ghana Indie Top 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ। It's time for our favorite part of the show. It's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic।
0: हमारा कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। The song we featured last week was

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अशकाय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

तेरा मेरा प्यार बाय कुमार सानू। ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात। आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट। एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट। This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video. मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे। What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को एनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, व्हिच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक। दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट RJ करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज भी ऐसे गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन एट RJ कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ संजू राठौर is back and how this time with bangles. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके bangles is playing right next for you on गाना नंबर 5. You are listening to गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 5.

0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: दोसांझ एंड सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Karenga ke saath, this is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Yahan par hum aane wale gaano ko discuss karte hain. Kaun naye collaborations ho rahe hain, kiska gaana hua countdown se out, ya kaun sa gaana ho sakta hai in. गाना नंबर 4 पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. दिल ना जाने ये दोनों आइकॉनिक आर्टिस्ट आती हैं टू क्रिएट नागिन, विच आई एब्सोल्युटली लव। इवन 2019 से 2026 तक आई कैन नॉट नेम अ लॉट ऑफ फीमेल डुओ पॉप सॉन्ग्स। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हियर्स मी पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स, आस्था एंड अकासा, वी नीड अ न्यू सॉन्ग फ्रॉम यू। दिस इज नागिन ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर इन अ सॉन्ग। गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक position ऊपर जम करके Dealer is this week on Gaana number 3। You're listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy। Number 3।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार, अनटशंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप राइट फ्रॉम द टॉप। अनूप जैन का अर्ज किया है वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: नई नवेली एंट्री हर्ष नुसी का साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 8। एमसी स्क्वायर का लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन गाना नंबर 7। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत येट अगेन विद डीलर ऑन गाना नंबर 3। जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबीना। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, मिट्टा रोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा कंपोज्ड बाय मिट्टा रोर दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यू मेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक, गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Do tole ki mundri la de, kin tole ka.

0: DJ Bridget.
1: वीकेंड ऑफिशियली ऑन और आज रात का सीन सिंपल है बॉस. एसी कम, डांस फ्लोर ज्यादा, क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड के साथ फुल वॉल्यूम, फुल सेलिब्रेशन. साथ में मिर्ची ओयोंतिका और वर्ल्ड कप फीवर भी बैकग्राउंड में चालू है, ब्लड स्ट्रीम में चल रहा है. गोल हो या ग्रूव, आज रात सब अलाउड है. चलो गर्मी बढ़ाते हैं, लेट्स बिगिन क्लब मिर्ची.

वापस आ गए स्टेडियम वाले चांस और डांस फ्लोर वाले जंप्स लेके टीचर रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ व्हेनेवर देयर्स फुटबॉल वर्ल्ड कप देयर्स शकीरा सो हियर्स द वर्ल्ड कप सॉन्ग जस्ट फॉर यू ऑन क्लब मिर्ची।

0: and DJ Richard on Club Mochi.
1: Kiseka.

कुछ लोगों की लव स्टोरी रोमांटिक होती है और बाकी सबका लव स्टोरी विद फुटबॉल कंटिन्यूज। टीचर रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक ऑन क्लब मिर्ची।

बट सेफली महफूज रहो यू सेक्सी बैक, ड्राइव मत करना, सेलिब्रेशन हैवी हो गया है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

अटेंडेंस लग चुकी है. वेलकम बैक एवरीबॉडी, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. ओ साकी साकी कमिंग अप राइट नाउ.

ਦੇਖ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾਗੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ।

जी सुन रहे हैं तो जन्नत यहाँ वीकेंड की जन्नत का एड्रेस यही तो है। यहाँ पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं यार।

वेले हो परफेक्ट क्लब मिर्ची रेडी है आपको ऑक्यूपाई करने के लिए। वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंदिका आपके साथ बनोगे हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

अब खेल खेल में क्लब मिर्ची अपने लास्ट लेग पे है, सो गिव अस एवरीथिंग यू गॉट। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। गेम हो या ग्रुप, कॉन्फिडेंस हाई कुछ मैटर नहीं करता, कोई कहे कुछ भी कहे।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

फुल पावर दिया, फुटबॉल फीवर को रिस्पेक्ट दिया और डांस फ्लोर को जस्टिस। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्टी तक। स्टे लाउड, स्टे सेफ। हियर्स योर साइन ऑफ ट्रैक, इट्स कॉल्ड पावर बाय डेविड गेटा। टाटा।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है and I think that is what really excites me और नया कॉन्सेप्ट होता है you know दिवाली के टाइम हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के टाइम हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं कंप्यूटर की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं सो मेनी डिफरेंट आइडियाज कीप कमिंग जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims, वो Friday होगा. Jewish लोगों में वो Saturday होता है. Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है. Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलीडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलीडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू आर थिंकिंग ऑफ व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं। पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम, बट इफ यू कांट, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता, या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे विल नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बींग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बींग बॉर्न और विष्णु बींग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड, तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाय योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार है या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
4: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
1: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट। ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके अध्यात्म और ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्सगिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर टर्की के बारे में लोग बात करते हैं। अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्सगिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफ कोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, हैज बिकम सो पावरफुल एंड मनी हैज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी। वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज आल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
4: इट वाज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू हितेश।
2: On Radio Mirchi,
3: The Devdutt Patnaik Show.
5: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि नेचर में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो at least festival के टाइम पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मंगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे, सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है and I'm a huge fan of yours.
0: Thank you so much.
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: जी,
3: तो हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi #devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द देवदत्त पटनायक शो आर द होस्ट्स अलोन, नॉट द चैनल्स।

मिर्ची, इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga. Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोस बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी, फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4।

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song in Ravan, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Only on Mirchi. It's hot. Number 50. Oh, look.

हार्डी संधु और प्रीतम दा का गाना फ्रॉम कॉकटेल वल्ला इस हफ्ते नंबर 15 पर पहुंच गया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, पंजाबी म्यूजिक सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं रहा, पंजाबी म्यूजिक खुद एक पैरेलल यूनिवर्स बन चुका है। और उस यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है गुरु रंधावा। अब गुरु के गानों के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि गुरु ने एल्गोरिथम को ही क्रैक कर लिया है, क्योंकि वो गाने रिलीज नहीं कर रहा, वो मोमेंट्स रिलीज कर रहा है। पहले गाने हिट होते थे, फिर लोग उन पे डांस करते थे, आज लोग डांस करते हैं और गाने खुद ब खुद हिट हो जाते हैं। और गुरु ने ये गेम सबसे पहले समझ लिया। आपको ये गाना कत्ल याद है? बिल्लो तेरी।

फसल। फिर आया वो गाना दैट वेंट वायरल ओवरनाइट। फिर एक के बाद एक नए ड्रॉप्स, नया हुक स्टेप, नया ट्रेंड, नई रील, नया वायरल मोमेंट। एंड देखते ही देखते गुरु वाज एवरीवेयर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, शादियों में, जिम प्लेलिस्ट में, कार के स्टीरियोज में। एक गाना रगों में घुसा नहीं कि गुरु एंड्स अप ड्रॉपिंग अनदर बैंगर। पिछले एक साल में गुरु के गानों को 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, नॉट मिलियंस, बिलियंस। एंड मुझे लगता है गुरु रंधावा सिंगर से ज्यादा अब एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहे, वो इंटरनेट की आदतों को डिजाइन कर रहे हैं। शायद इसलिए मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता जब उनका कोई नया गाना काउंटडाउन पर आ जाता है, लोगों को पसंद भी आने लगता है, क्योंकि गुरु आजकल हिट्स नहीं क्रिएट कर रहे, वो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। दिस वन इज फ्रॉम धमाल 4, इट्स डेब्यूइंग दिस वीक ऑन नंबर 14। ये है नंबर 14।

आई थिंक मैंने धुरंधर 2 कम से कम 4 बार देख ली है फ्रॉम द टाइम इट ड्रॉप्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड इतनी लंबी है दैट इट कुड हैव बीन अ वेब सीरीज मैन बट यस देखते वक्त एक थॉट जरूर आया यार कितनी रेयर हो गई है ये बात जहां एक फिल्म आती है और फिल्म भी काम करती है और म्यूजिक भी काम करता है एक और अच्छा एग्जांपल है अगला गाना नंबर 11 पर तू ही दिसदा बाय अरिजीत एंड निकिता गांधी फ्रॉम भूत बंगला लेकिन आजकल बॉलीवुड में फिल्म और म्यूजिक का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है या तो फिल्म कमाल की होती है और गाने याद नहीं रहते या फिर गाने दिल में जगह बना लेते हैं और फिल्म 2 हफ्तों में दिमाग और थिएटर दोनों से निकल जाती है और ऑनेस्टली दूसरा वाला केस ज्यादा कॉमन है बॉलीवुड को अभी भी ग्रेट म्यूजिक बनाना तो आता है बस उसके लेवल की फिल्म्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है अब मैं वो पुराने एग्जांपल्स झूम बराबर झूम रॉय अनजाना अनजानी इनकी बात नहीं करूंगा दैट इज प्रीटी ओल्ड पिछले 10 सालों की बात करते हैं सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे लिए था लव आजकल इम्तियाज अली प्रीतम और एक साउंड ट्रैक जो आज भी जिंदा है शायद

देखो फिल्म के बारे में लोग क्या सोचते हैं उस पर एक पूरी डिबेट हो सकती है, गाने के बारे में बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर आई ए दिल मुश्किल, और टाइटल ट्रैक ने फिल्म से भी लंबी जिंदगी जी ली।

0: और फिर एक साउंड ट्रैक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अमित त्रिवेदी का फितूर, एक ऐसा एल्बम जहां म्यूजिक ने वो इंपैक्ट क्रिएट किया जो फिल्म कभी नहीं कर पाई। कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ गाने फिल्म से बड़े हो जाते हैं, और फितूर का टाइटल ट्रैक उनमें से एक है। Here on my special request, this is Fitoor by Arijit Singh.
1: Special request song.

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

0: कॉकटेल 2 से बंधु 2.0 इस हफ्ते नंबर 10 पर डेब्यू कर रहा है एंड मुझे इस गाने से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीतम दा ने तो खुद कहा था कि लोग ट्रोल भी करेंगे और कंपेयर भी करेंगे, और कंपेयर तो करेंगे ही, लेकिन बंधु 2.0 सुनते वक्त आई गॉट अ फीलिंग मैन, कॉकटेल 2 इज अ गुड एल्बम, लेकिन कॉकटेल 1 वाज अ डैम गुड एल्बम। कॉकटेल 1 एक पूरी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर गाना अलग आसमान के नीचे रहता था। एक तरफ था अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी,
1: मोला

पूरा गाना ऐसे लगता था जैसे दोस्तों ने जिंदगी को कंधों पर उठा रखा हो और दुनिया को कहा हो यार कल देखेंगे, एंड देन यू हैड सेकंड हैंड जवानी।

0: बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल उस उम्र की तरह जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस नाम की चीज डिक्शनरी में होती ही नहीं थी। और फिर इन सबके बीच एक गाना, ना सबसे लाउड, ना सबसे कमर्शियल, ना सबसे वायरल, बस सबसे सच्चा। एक ऐसा गाना जो शोर खत्म होने के बाद भी साथ रहता था, जैसे समंदर के किनारे रात के 2 बजे बैठकर अचानक किसी की याद आ जाती है, जैसे एक पुरानी दोस्ती, जैसे एक अधूरी मोहब्बत, जैसे जिंदगी का वो पन्ना जिसे आप कभी बंद ही नहीं कर पाए। कॉकटेल 2 मुझे पसंद है, लेकिन कॉकटेल 1 मुझे याद है। और म्यूजिक में पसंद और याद के बीच जो फासला होता है ना, उसे ही टाइमलेसनेस कहते हैं। Here is my version of Timeless, Mohan Kannan और Sunidhi Chauhan की आवाज में। It's my pick of the week, ये है यारियां।
1: Pick of the week.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8

0: जाइए सजना इस हफ्ते भी टॉप 10 में है, इट्स अ नंबर 8 एंड मुझे लगता था कि बॉलीवुड के बारे में मुझे सब कुछ पता है। फिर धुरंधर आई और मुझे रियलाइज हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। सीरियसली दिसंबर में ऑडियंस ने पहली बार धुरंधर की दुनिया में छलांग लगाई। 7 महीने, 2 फिल्में, 3,200 करोड़ रुपए और आज धुरंधर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार गायब है। नो इंटरव्यूज, नो विक्ट्री लैप, नो एंडलेस मीडिया अपीयरेंसेस, नो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हेडलाइंस। रणवीर सिंह इसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे याद ही नहीं कि बॉलीवुड में ऐसा लास्ट कब हुआ था भाई। हमने राकेश बेदी जी को सुन लिया, हमने दानिश पंडोर को सुन लिया, हमने माधवन को सुन लिया और अब हम फाइनली मेजर इकबाल को भी सुन लेंगे।
1: जब आप एक्टिंग करते हैं या जब आप काम पे जाते हो, एक ही इंसान पे वो फिल्म नहीं बनती है। इट्स अ कलेक्टिव अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। तो आप देखते हो कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपको देख कितना रहा है, यू नो, वो कितना ओपन है। और रणवीर इज बीन वेरी वेरी ओपन सजेशंस के लिए, रिहर्सल्स में, काम करने के टाइम पे। और सारी जो टीम थी वो वैसी थी, जितने भी डिपार्टमेंट थे, अगर हेयर हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम्स हो, म्यूजिक हो, एक्शन हो, यू नो, डायलॉग हो, उनको इतनी छूट दी गई है बाय आदित्य धर। और इतनी ओपननेस थी उनके माइंड में कि वो जानते हैं कि ये आपका काम है, तो वो अलाउ करते हैं सभी को कि वो अपने ट्रिपल ए परफॉर्मेंस या ट्रिपल ए गेम टेबल पर ला।
0: अर्जुन रामपाल को सुनने के बाद एक बात समझ आ गई है, शायद धुरंधर की सक्सेस किसी एक सुपरस्टार की सक्सेस नहीं है, शायद ये एक रेयर फिल्म है जहां हर डिपार्टमेंट ने अपना ए गेम लाकर टेबल पर रख दिया। शायद इसलिए फिल्म इतनी बड़ी हिट बन गई। लेकिन फिर भी यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का हीरो अब भी खामोश है और जब तक वो बोलेगा नहीं, मिस्ट्री जिंदा रहेगी। नंबर 7।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोग ये है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कम बैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्म्थ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कम्पीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 2.

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बात हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है। और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसे ही दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

0: Energy. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वे कजरा मेरे अंदर हुंदी शूशा शूशा हर वेले हंसा कवा हुआ।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, अ स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साड़ी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, किस्सा कहानी कुछ भी बताना हो, @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली हिट मी अप। गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेस को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: हाँ वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनेको ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां रावटोर का म्यूजिक, गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, स्वागत है आपका। This is the Ghana Indie Top 10। बदी का नाम है RJ Kanika। Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika। कोई गाना suggest करना हो बिंदास आके बताओ। It's time for our favorite part of the show. It's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic।
0: हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। The song we featured last week was

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अश्काय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू प्ले दिस वीक इज The one and only तेरा मेरा प्यार by कुमार सानू। ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात। आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट। एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट। This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video, मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था, ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे। What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को एनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, विच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक। दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट RJ करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज भी ऐसे गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन एट RJ कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ संजू राठौर is back and how this time with bangles. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके bangles is playing right next for you on गाना नंबर 5. You are listening to गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 5.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: दिलजीत दोसांझ एंड सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: करेगा के साथ, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, जाए मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। यहां पर हम आने वाले गानों को डिस्कस करते हैं, कौन नए कोलैबोरेशन हो रहे हैं, किसका गाना हुआ काउंटडाउन से आउट, या कौन सा गाना हो सकता है इन। गाना नंबर 4 पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल्ड अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. दिल ना जाने एंड ये दोनों आइकॉनिक आर्टिस्ट आती हैं टू क्रिएट नागिन, विच आई एब्सोल्युटली लव। इवन 2019 से 2026 तक आई कैन नॉट नेम अ लॉट ऑफ फीमेल डुओ पॉप सॉन्ग्स। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हियर्स मी पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स, आस्था एंड अकासा, वी नीड अ न्यू सॉन्ग फ्रॉम यू। दिस इज नागिन ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: पीक पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर ऑन अ सॉन्ग। गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दसांज once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक position ऊपर जम करके Dealer is this week on गाना number 3। You're listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 3।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार, अनटशंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप राइट फ्रॉम द टॉप। अनूप जैन का अर्ज किया है वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: नई नवेली एंट्री हर्ष नुस्सी का साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 8। एमसी स्क्वायर का लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन गाना नंबर 7। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत येट अगेन विद डीलर ऑन गाना नंबर 3। जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबीना। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, मिट्टा रोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा कंपोज्ड बाय मिट्टा रोर दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक, गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

गुड़ खलया गुड़ वाली चा किन्न पीती वो जिदा नाड़ा किन्न खिचया खिच के मर किन्न सीटी।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हरा कर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga.
3: Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लव्स कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोस बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70
1: ऊपर

0: फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो,
1: तड़प

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song, In Ravan, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: Top 20 Rewind.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 50.

0: आरडी संधू और प्रीतम दा का गाना फ्रॉम कॉकटेल वल्ला इस हफ्ते नंबर 15 पर पहुंच गया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, पंजाबी म्यूजिक सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं रहा, पंजाबी म्यूजिक खुद एक पैरेलल यूनिवर्स बन चुका है। और उस यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है गुरु रंधावा। अब गुरु के गानों के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि गुरु ने एल्गोरिथम को ही क्रैक कर लिया है, क्योंकि वो गाने रिलीज नहीं कर रहा, वो मोमेंट्स रिलीज कर रहा है। पहले गाने हिट होते थे, फिर लोग उन पे डांस करते थे, आज लोग डांस करते हैं और गाने खुद ब खुद हिट हो जाते हैं। और गुरु ने ये गेम सबसे पहले समझ लिया। आपको ये गाना कत्ल याद है?
1: बिल्लो तेरी।

0: फिर आया वो गाना दैट वेंट वायरल ओवरनाइट। फिर एक के बाद एक नए ड्रॉप्स, नया हुक स्टेप, नया ट्रेंड, नई रील, नया वायरल मोमेंट। एंड देखते ही देखते गुरु वाज एवरीवेयर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, शादियों में, जिम प्लेलिस्ट में, कार के स्टीरियोज में। एक गाना रगों में घुसा नहीं कि गुरु एंड्स अप ड्रॉपिंग अनदर बैंगर। पिछले एक साल में गुरु के गानों को 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, नॉट मिलियंस, बिलियंस। एंड मुझे लगता है गुरु रंधावा सिंगर से ज्यादा अब एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहे, वो इंटरनेट की आदतों को डिजाइन कर रहे हैं। और शायद इसलिए मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता जब उनका कोई नया गाना काउंटडाउन पर आ जाता है, लोगों को पसंद भी आने लगता है, क्योंकि गुरु आजकल हिट्स नहीं क्रिएट कर रहे, वो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। This one is from Dhamaal 4. It's debuting this week on number 14. Yeah!
1: Number 14.

आई थिंक मैंने धुरंधर 2 कम से कम 4 बार देख ली है फ्रॉम द टाइम इट ड्रॉप्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड इतनी लंबी है दैट इट कुड हैव बीन अ वेब सीरीज मैन बट यस देखते वक्त एक थॉट जरूर आया यार कितनी रेयर हो गई है ये बात जहां एक फिल्म आती है और फिल्म भी काम करती है और म्यूजिक भी काम करता है एक और अच्छा एग्जांपल है अगला गाना नंबर 11 पर तू ही दिसदा बाय अरिजीत एंड निकिता गांधी फ्रॉम भूत बंगला लेकिन आजकल बॉलीवुड में फिल्म और म्यूजिक का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है या तो फिल्म कमाल की होती है और गाने याद नहीं रहते या फिर गाने दिल में जगह बना लेते हैं और फिल्म 2 हफ्तों में दिमाग और थिएटर दोनों से निकल जाती है और ऑनेस्टली दूसरा वाला केस ज्यादा कॉमन है बॉलीवुड को अभी भी ग्रेट म्यूजिक बनाना तो आता है बस उसके लेवल की फिल्म्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है अब मैं वो पुराने एग्जांपल्स झूम बराबर झूम रॉय अनजाना अनजानी इनकी बात नहीं करूंगा दैट इज प्रीटी ओल्ड पिछले 10 सालों की बात करते हैं सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे लिए था लव आजकल इम्तियाज अली प्रीतम और एक साउंड ट्रैक जो आज भी जिंदा है शायद

देखो फिल्म के बारे में लोग क्या सोचते हैं उस पर एक पूरी डिबेट हो सकती है, गाने के बारे में बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर आई ए दिल मुश्किल, बट टाइटल ट्रैक ने फिल्म से भी लंबी जिंदगी जी।

0: और फिर एक साउंड ट्रैक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अमित त्रिवेदी का फितूर, एक ऐसा एल्बम जहां म्यूजिक ने वो इंपैक्ट क्रिएट किया जो फिल्म कभी नहीं कर पाई। कुछ गाने हिट होते हैं, कुछ गाने फिल्म से बड़े हो जाते हैं, और फितूर का टाइटल ट्रैक उनमें से एक है। Here on my special request, this is Fitoor by Arijit Singh.
1: Special request song.

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

टेल 2 से बंधु 2.0 इस हफ्ते नंबर 10 पर डेब्यू कर रहा है। एंड मुझे इस गाने से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीतम दा ने तो खुद कहा था कि लोग ट्रोल भी करेंगे और कंपेयर भी करेंगे, और कंपेयर तो करेंगे ही, लेकिन बंधु 2.0 सुनते वक्त आई गॉट अ फीलिंग मैन, कॉकटेल 2 इज अ गुड एल्बम, लेकिन कॉकटेल 1 वाज अ डैम गुड एल्बम। कॉकटेल 1 एक पूरी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर गाना अलग आसमान के नीचे रहता था। एक तरफ था अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी।